मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसी ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े माण नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ भए। उस माण विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी का, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार का मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु का परिवार हाँ, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस माण विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार अवगुण कौन चितार गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता जानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतृण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे।

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

मत भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहू देव बानी कहू सारधा भवानी कऊ मंगला मेड़ानी कऊ श्याम कहू सेत हो।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हैं हमारे। गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जागता है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा हो, मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी है, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगता है, चाल तो पता लगता है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगता है, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगता है इसके अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो उही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदल दें जदों गुरु के मार्ग पै जाए।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह जी हजूरी विच सदके जो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो दिना वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो ज्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है, सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। तो यह हुक्म कलगीधर का सुन के तो वह कहाण वाला कोई गुरु का सिख किसी देर अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके जंदिए साहब की बख्शिश है भी जो गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाओ भी ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ये उत्तम है ये प्रमाणिक है ये ना प्रमाणिक है तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए जंदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है ते राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुणदा नहीं ते मैं समझदा वी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनन वाले कन्न नहीं उन्होंने दिते। नेत्र तां दिते पर साहिबां दी दसे सतगुरां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दिते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुन दा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शिया है पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दिता। इसलिए सब सिखन को हुक्म है की आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा किश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिसाच कहू प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

देत हो, कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो, कतहूं विचार अब विचार को विचारत हो, कहूं निज नार

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सुकहा न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगा जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगा गुण गावत के पुत्र समय सच्चे के गुणगा गुण गावत तेरी पुत्र समैल बिन सजाए हो मैं दुख है जन्म कर्म।

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहली शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा।

तजी ओरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थिया। पहला अंतरा है ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृदंग अनाहद कोकिलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया। आखिरी अंतरा है ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिया अमोग तैसे ही संग संत बने पब उतार नाम पन्ने राम राम राम लाल मन फेरते अर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया।

मैं तेरे ते मान करना, तेरा पुत्र हां। हो मान तान करो तेरा, हो जानो आपा, सबू मत सबे ते बाहर बे मोहताज बापा। पिता हो जानो नाही, पिता जी मेनू आउंदी नहीं, समझ नहीं आउंदी तेरी जुगत की है। मेरे को धारण नहीं की जाती, बच्चा जी बहुत छोटा अनजान। बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता, बंधना तो छुड़ाने वाला मेरा सतगुरु मेरा वाहिगुरु, फिर भी ममता करदा मेरा बड़ा ख्याल करदा। भय कृपाल ठाकर रहो आवन जाना, मैं उंगली पकड़ ली मेरी भटकना मुक गई। उंगली छुट जाती मैं जूना च भटक जाना, सृष्टि के इस मेले में मैं भटकना पले पै जाती, लेकिन गुरु की उंगल पकड़ लेना मेरा आना जाना भटकना जमना मरना मिट जाता है। मैं टिक जाना, उस टिक जाने वास्ते गलतियां तो होंदिया ने, पर खिमा मंग लीए, गोदी च बैठ जाइए, पदार्थ भी ले चलीए मौजा भी ले चलीए, मालक की निग भी प्राप्त रहे, उदी जुगत भी लैन का जतन करते रहिए, उदी सिख्या भी लैन का जतन करते रहिए, ते फिर कल उपदेश झटके बहु पाती बौर पिता गल लावे, पिछले औकड़ बख्श लाए, प्रभ आगे मार्ग पावे।

देह राम मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होई। देहरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, इह सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो,

राक्षस, जश, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वख हैं, पहरावे भी वख, देश भी वख, और इन चीजों का असर इंसान ते होंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपा मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवे।

अपने मन विच एक गल सोचो, एक नैन एक कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली, खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी। परमेश्वर ने पंज तत् मिला के पंजा तत्ता दा ए शरीर बनाया। साहब जी कहंदे ने चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, संसार विच जितने भी इंसान हन सारे पंज तत्ता तो बने हन। ते फिर भाई फर्क की है, फिर ए झगड़े क्यों नहीं?

अज दे नहीं सदियां तो चले आ रहे हैं। क्यों कुछ लोग धर्मी अखवांदे हैं पर धर्मी होंदे नहीं। धर्मी इंसान कदे किसी ते जुलम नहीं करता। धर्मी इंसान किसी का निरादर नहीं करता। भाई गुरदास जी अपनी वार विच बयान करते हैं कि ए देखो सच न छड़ के लोग किस तरह आपस विच लड़ते मरते हैं। भाई साहब जी बयान करते हैं

और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे चार वर्ण चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक नहीं, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं,

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पे लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

चले आ रहे है इस सदियां तो उपदेश भी यही हो रहे है कि भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब दा रूप समझो, ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने ओना दे राह छड़ दे हो। भाई साहब जी बयान करते हैं मंदिर ढा के मसीतां बनाईयां ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाने वाला अपने अल्लाह नूं प्यारा लग सकदा है? कदी नहीं लग सकता।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे भाई गुरुदास।

वड़े वड़े राजे, वड़े वड़े नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया। राजभाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां

जाओ निवाजू जी। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब का घर हैं, इन्हों का अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आप कहने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये रब का वाहेगुरु का राम का घर है भगवान का घर है, पर इंसान अज का कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहिंदा है वह रब का घर है, जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है वह इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों वह गुरेज नहीं करता। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि वह अपने धर्म दे नाल इंसाफ करते हैं कि वो जिस रब दे नाल प्यार करते हैं अपने मन को पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहे हैं, अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल जाएगा।

दिल मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे को सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जेड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जेड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जेड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, तो फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा।

गुरु साहबा ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं आता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज में हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकन वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई, आपां भी महापुरशां दे राह ते चलिए और ये जिहड़ा उपदेश है इसनू अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नू मन लवेगा।

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। सात सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नूं इनाम वजों धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नूं मैता कालू नूं वधाइयां मिल रहियां हन। अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिस

मांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है कि दौलत खान जदों

और मुसलमान निवाज पढ़ दे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, देहो राम मसीत सोई, पूजा हो निवाज हो ही। देहोरा और मसीह पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंदिर

राक्षस, जस, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् है, देश भी वक् है, और इन्हां चीजां दा असर इंसान ते हुंदा है। पर सतगुरु जी कहंदे ने अगर आपां मन विच विचार करिए ते सानू किसे विच फर्क नजर नहीं आवे।

झगड़े वधाण वाले हो, अपने मन विच एक गल सोचो, एके नैन एके कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली, खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी। परमेश्वर ने पंज तत मिला के पंजा तत्तां दा ए शरीर बनाया। साहब जी कहंदे ने चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, संसार विच जितने भी इंसान हन सारे पंज तत्तां तो बने हन। ते फिर भाई फर्क की है, फिर ए झगड़े क्यों नहीं?

Tri Brahman Shudves. और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहे है पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन भाई साहब जी बयान कर दे चार वर्ण चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा और झगड़े।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जिहड़ा ये जन्म मिले है झगड़िया विच गवा लिया, और आवा गाउण दा चक्कर जिहड़ा है ये उस तरह ही।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे भाई गुरु

जिड़े जालम कोल शक्ति आ जाए ओ फिर गरीबां ते जुलम करदे मारन गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप बिथारा और धरती ते इतने पाप हो गए इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी राजे जुलमी हो गए वजीर पाप कमाण लग पए अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना भाई साहब जी कह रहे ने

और जिन्हां ने इंसाफ करना, जिन्हां ने प्रजा का भला करना है, उन्हां दा हाल की? काफर, मुलहद, इरमनी, रूमी जंगी दुश्मन दारा दारा कहंदे ने औरत नूं। वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया? राजभाग मिल गया लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा इह काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून वहा देना इक औरत वास्ते। पापे दा वरतिया वरतारा, इतना पाप हो गया, रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया? नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इह नाराजियां महाराजियां दा, वजीरां दा की काम बन गया? अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पए।

मुसलमान ओ जेड़ा अपने अल्लाह को सारे वास्ते मेहर मंगे, सारे वास्ते रब को दुआ मंगे। साहब जी कहते ने सर्ब जिया में रहमत होए ता मुसलमान कहावे, जेड़ा सारिया को प्यार मंगे, सारिया नू प्यार देवे, और जेड़ा अल्लाह को भी सारे वास्ते मेहर मंगे, साहब जी कहते ने वह मुसलमान है, और मुसलमान का

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसे न दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे, आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पासे ब्राह्मण नो उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनु ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया ओ फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, ओ जिधर भी देखेगा ओनु ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

गुरु साहबानी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसे फिरके दे खिलाफ नहीं, वो जुलम दे खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करन वाले दा कोई धर्म नहीं होंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुलम दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरशां दे राह ते चलीए, और ये जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा ओहदा